0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं होनी, कुछ तेरियां ने कुछ मेरियां ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना, तू कदे परछावे तो नेड़े तू कदे सब तो दूर, तेरा हासा तेरा रोना ते कदे कदे एकदम चुप होना, सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नूं जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया, हां खुशी है मैनू तू जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया, गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है, ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या, विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: मालूम है शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है।

ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

मेला ऊंच पाऊं यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाऊं मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

कदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है हमाना के देर हुई इस कलम से वादा है।

0: your home for community. CJMR 1320.
1: एक अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की.

जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, आई एम द बैरेस्ट मदर।
1: हार्ट बीट।

हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर जो मांगी दुआ में मन्नत

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

बात बे वफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

अपराध की लालच को जाने दो। मैंने गम देखा हार देगी, बचपन में बैठों की मार देगी, दुनिया देती गाली बस माई प्यार देगी, मदद के लिए पुकार खुशियों के लिए गुहार देगी, रिश्तों में दरार यारों से यार मार देगी। मैंने बेचैन अपनी सांस मरने के लिए आज देगी, एक मंजिल देगी फिर तलाश देगी, सपनों के बिना जिंदा

ख्वाब बने लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया, मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया, टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे।
1: अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
2: योर होम फॉर कम्युनिटी CJMR 1320.